0: Extreme Energy Drink.
1: 哎，丸子，阿我卡船都下船都关掉呢，你咋在这里有的？阿提卡拉的 computer 给你背下一袋进去。哦，你买的 computer 在哪进去的？我在海里的丸子，哪里阿出的妈妈？给这海里的丸子。
2: Portic Computer Center， 这哈 computer、laptop、printer、UPS 罗个哎 ，computer 什么的全部的啥么办去？我有办公室办了，几个进去？
1: 妈妈，丸子，这海里你咋在这里有提卡拉进去 computer 也带进了？阿我卡船都下船都关掉呢，大兵也是20000个 Portic Computer Center 么在这修理的设施。अंत कहीं पाइदा ही ना
3: जस्तो खोजे त्यस्तै कम्प्युटर पाइने बिग्रियो भने पनि बनाइदिने त्यसैले अन्त हैन कम्प्युटर चाहिए धादिङ बेसी बीच बजारको प्रतीक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने
4: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रतीक कम्प्युटर भएपछि सधैँ झुक्क
3: फोन नम्बर 010-5509-97-9510-97-778
5: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़